और जब हम इरादा कर लेते हैं कि किसी बस्ती को तबाह कर दें तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म दे देते हैं कि मनमानी कार्रवाइयां करते फिरें, फिर वो उसमें फिस्क व फुजूर करते हैं तो उस पर फरमान सादिक आ जाता है, सो हम उसको मलिया मेट कर देते हैं।

लोग हैं जिन्हें हमने नूह के बाद हलाक किया, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने और उन पर नजर रखने के लिहाज से बहुत काफी है।

0: इस नज़्म की फरमाइश की है उनका नाम मुबारका साहिबा ऑस्ट्रेलिया से कलाम हजरत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमाउल्लाह प्रोग्राम इंतखाबे सुखन
1: दियार-ए-मशरिक के बासियों को किसी गरीबुल वतन मुसाफिर की चाहतों

के सेट बना के बैठे हैं. सो इफ गॉड हैज यू नो क्रिएटेड मैनकाइंड, ही हैड क्रिएटेड द वर्ल्ड्स, देन वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,